ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान की वजीर खजाना कातायामा सात्सुकी ने मशरक वस्ती के बहरान के दौरान माशी मुश्किलात में घिरे तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के साथ तआवुन करने का वादा किया है। कातायामा ने वस्ती एशियाई मुल्क उज्बेकिस्तान में एशियाई तरक्याती बैंक के पीर के रोज़ के बोर्ड इजलास में शिरकत की। खित्ते में इस अमर पर तशवीश पाई जाती है कि मजकूरा बहरान तवानाई और खुराक की सलामती के साथ साथ मईशतों पर किस तरह असरअंदाज होगा। जापानी वजीर खजाना ने कहा कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल पूरे एशिया बहरुल काहिल के लिए एक अहम मसला है। उनका कहना था कि जापान छोटे और दरमियानी दर्जे की कंपनियों को ईंधन की किल्लत से निपटने के लिए माली इमदाद फराहम करने की गर्ज से तरक्याती बैंक के साथ मिलकर काम करेगा और तवानाई तब्दीली को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक को सरमायाकारी और कर्जों की पेशकश भी करेगा। उन्होंने इस इजलास के बाद कहा कि फराहमी चैन एशिया भर में फैली हुई है, इसलिए खित्ते की मदद करना जापान के लिए बड़ा सूदमंद है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के अरकान ने फिलिपाइन और अमेरिका की तरफ से मुनक्किदा जंगी मशक के हिस्से के तौर पर बराह रास्त फायर की कड़ी मशक में हिस्सा लिया है। बालिकातान नामी ये मशक 20 अप्रैल को फिलिपाइन में शुरू हुई थी, जिस JSDF ने इसमें हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 1400 एहलकारों को भेजा है। पीर के रोज़ मुनक्किदा मशक में शुमाली फिलिपाइन के सूबे इलोकोस नोरते के साहिल पर हमले को पसपा करने की तरबियत शामिल थी। इस इलाके के सामने बुहिरे जनूबी चीन वाक़ है। अमरीकी फ़ौजियों ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाई मार्स का इस्तेमाल करते हुए समंदर में फायरिंग की। उन्होंने ड्रोन रोकने के लिए सतह से फ़ज़ा में मार करने वाले एक नकल पजीर मिज़ाइल निज़ाम के इस्तेमाल का मुजाहरा भी किया। जापान की बड़ी सेल डिफेंस फोर्स की बहरी और बरी दोनों जगहों पर तेज़ी के साथ तैनात की जाने वाली ब्रिगेड, जिसका सदर दफ्तर नागासाकी में है, उसके तकरीबन 40 अरकान ने हल्की गनों से गोला बारूद का फायर किया। ये मश टोक्यो और मनीला के माबेन एक सलामती मुआहदे के गुज़िश्ता साल नफाज के बाद हुई है। ये मुआहदा मुश्तरका मशकें करने के मतलूबा अमल को सहल बनाता है। जापानी हुकूमत के आदाद शुमार से पता चलता है कि मुल्क में बच्चों की तादाद कम होकर 1,33,00,000 रह गई है। ये तादाद मुसलसल 45वें साल कम हुई है। दाखिली उमूर की वजारत के तखमीने के मुताबिक यकम अप्रैल तक 14 साल या इससे कम उम्र बच्चों की तादाद 1,32,90,000 थी, जो एक साल पहले के मुकाबले में 3,50,000 कम है। कुल तादाद में 68,10,000 लड़के जबकि 64,80,000 लड़कियां हैं। उम्र के लिहाज से तकसीम किया जाए तो जूँ जूँ उम्र का ग्रुप छोटा होता जाता है, बच्चों की तादाद भी कम होती जाती है। मिसाल के तौर पर 12 से 14 साल के बच्चों की तादाद 30,90,000 है, जबकि 0 से 2 साल के बच्चों की तादाद सिर्फ 21,30,000 है। बच्चों की तादाद अब मुल्क की आबादी का 10.8% है, जो साल ब साल के लिहाज से 0.3% की कमी है। ये फ़ीसद अब मुसलसल 52वें साल कम हुई है। अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी आबादी के तखमीनों के मुताबिक 1 जुलाई 2025 तक 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में ये फ़ीसद जनूबी कोरिया के 10.2% के बाद दूसरा कम तरीन है। और सामीन, इसके साथ NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से ख़बरें ख़त्म हुईं। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तजियों के लिए आप जब चाहें विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 5 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करता एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इन दिशा निर्देशों में ऊर्जा, अहम खनिजों, खाद्य पदार्थों और अन्य प्रमुख संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में वार्ता की। ताकायची ने वार्ता की शुरुआत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जटिल और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से वे कई वर्षों से समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देती आई हैं। नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थिर द्विपक्षीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ताकायची और अल्बानीज इस बात पर सहमत हुए कि अल्बानीज की जापान यात्रा से पहले दोनों देशों के मंत्रीगण व्यापक सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने तथा संस्थागत रूप देने के ठोस तरीकों का पता लगाएंगे। दोनों नेता जापानी आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच सहयोग मजबूत करने के प्रयासों पर भी सहमत हुए। नेताओं ने पुष्टि की कि उनके देश साइबर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामरिक साझेदारी करेंगे। उन्होंने पश्चिम एशिया, चीन और उत्तर कोरिया सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध व सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की और वे तनाव कम करने के लिए निकट संपर्क में रहने पर भी राजी हुए। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है, जिसके बाद ये सहमति हुई है। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष शफरी शमसुद्दीन ने सोमवार को जकार्ता में मुलाकात की। शमसुद्दीन ने जापानी नीति में किए गए इस बदलाव का स्वागत किया। पिछले महीने जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने से संबंधित अपने 3 सिद्धांतों और उनके परिपालन दिशा निर्देशों में संशोधन किया था। विदेशों को रक्षा उपकरण हस्तांतरित करने के नियम बचाव और परिवहन जैसी 5 श्रेणियों तक सीमित थे, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से जापान को सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा पोतों और मिसाइलों जैसे घातक हथियारों के स्थानांतरण की अनुमति मिल गई है। रक्षा प्रमुखों ने और अधिक समन्वय के प्रयास में मंत्री, उपमंत्री और रक्षा बल प्रमुख जैसे 3 स्तरों की आपसी संवाद व्यवस्था स्थापित करने की भी पुष्टि की। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने जानकारी की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। बाद में उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आपदा संबंधी राहत उपायों और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विकासशील देशों की सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया है। कातायामा सोमवार को मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में ADB की मंडल बैठक में शामिल हुई। इस क्षेत्र में इस बात को लेकर चिंता है कि ये संकट ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कातायामा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जापान ADB के साथ मिलकर छोटी और मझौली कंपनियों को ईंधन की कमी से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों को निवेश और ऋण भी उपलब्ध करवाएगा। बैठक के बाद कातायामा ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाएं एशिया तक फैली हुई हैं, इसलिए इस क्षेत्र की मदद करना जापान के लिए काफी फायदेमंद है। जापान के आत्मरक्षा बल यानी JSTF के कर्मियों ने फिलीपींस अमेरिका सैन्य अभ्यास के तहत गोलाबारी अभ्यास किया है। बालिकातान अभ्यास फिलीपींस में 20 अप्रैल को शुरू हुआ था। JSTF ने इसमें भाग लेने के लिए लगभग 1,400 कर्मी भेजे हैं। सोमवार के अभ्यास में उत्तरी फिलीपींस के इलोकोस नॉर्ते प्रांत के तट पर आक्रमण को रोकने का प्रशिक्षण भी किया गया। यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर की ओर मुख किए हुए है। अमरीकी सैनिकों ने हाईमार्स नामक प्रणालियों से समुद्र में रॉकेट दागे। उन्होंने ड्रोन विमानों को भेदने के लिए सतह से हवा में मार करने में सक्षम पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली का भी उपयोग किया। जापान के थल आत्मरक्षा बल की उभयचर त्वरित तैनाती ब्रिगेड के लगभग 40 कर्मियों ने रिकॉयललेस बंदूकों से गोलीबारी की। इस ब्रिगेड का मुख्यालय नागासाकी में है। जापान और फिलीपींस के बीच पिछले साल लागू हुए सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद ये अभ्यास किया जा रहा है। ये समझौता संयुक्त अभ्यास की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में बाल जनसंख्या घटकर 1,33,00,000 हो गई है। लगातार 45वें वर्ष इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय का अनुमान है कि 1 अप्रैल तक 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों की संख्या 1,32,90,000 थी, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 3,50,000 कम है। कुल बाल जनसंख्या में लड़कों की संख्या 68,10,000 है, जबकि लड़कियों की संख्या 64,80,000 है। आबादी को आयु वर्ग के अनुसार विभाजित करने पर आयु वर्ग कम होने पर संख्या कम होती जाती है। उदाहरण के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के 30,90,000 बच्चे हैं, लेकिन 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 21,30,000 बच्चे हैं। देश की कुल जनसंख्या में बच्चे अब 10.8% हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 अंक कम है। ये प्रतिशत लगातार 52 साल से घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई 2025 तक 4 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देशों में ये आंकड़ा दक्षिण कोरिया के 10.2% के बाद दूसरा सबसे कम है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।